0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: जी लिस्नर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
6: वालेकुम सलाम।
5: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
6: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी को जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है, और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
5: हम फिर से उनका पैगाम लेंगे हजरत अल्लामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का जो में पैदाइश है, जिनके तस्वुर की बुनियाद पर ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन अहम है, और हमारी की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझें, बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। महमूद रिजवी।
13: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
13: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: Listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 per square yard, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

أشهد أن لا

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ़ उठाइए।
0: ब्रेकफास्ट एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: Aashna apni haqeeqat se ho.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07-414-26-007-8।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ने बड़ा वास्ता दिया, बहुत बड़ा वास्ता मुझे दिया, मजबूरन मैंने उनसे वादा कर लिया, तो मैं पढ़ा हूँ। तीन शेर आप समाप्त कर लीजिए। शायर ने कहा, पंजाबी शायर ने, कहता है

0: और
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: अपने बंगाली भाइयों की खिदमत में एक नात का नजराना।

0: Central. Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Mashallah.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
6: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: Ya khayra man dufnat fil biqa'i a'zamuhu, fatab min tibihin al-qa'u wal-akamu, nafs al-fida'u liqabrin anta sakinuhu, fihi al-afaf wa fihi al-jud wal-karamu. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك

0: Redford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
5: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
8: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
11: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: bichhaye.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
14: अरे सेफे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
13: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
14: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफे राइडर।
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
14: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
13: सेफे राइडर UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Miller CIC presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए।

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
14: You're listening to Bradford Asian Radio,
15: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: Manipur Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: पता है किसका शोर? वो है मैनिंगम सुपर स्टोर, मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
13: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: 可以。
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 14:13 AM and online.

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world.
5: Quality, value, style and security. Your number one choice, first choice, Windows Yorkshire.
6: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio.
3: our voice, your choice. Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB+, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
4: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
9: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio. Bradford Asian Radio.

0: 13:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
5: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने एशियन वेडिंग UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. You're listening to Bradford Asian Radio.

You're listening to Bradford Asian Radio.

0: 14:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio. This is Bradford Asian Radio.

0: 13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है
3: तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वीज।
0: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice. You're listening to Bradford Asian Radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
13: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
12: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian Radio. Bradford Asian Radio.

0: your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
7: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
10: This is Bradford Asian Radio.

ये बेडफोर्डेशन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordationradio.co.uk पर ऑनलाइन। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर दें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप भी अगर हमारी बदन की रौनक बढ़ाना चाहें, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

अभी तो मैं बेइंतहा अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बहुत अजीज दोस्त और यहाँ इंग्लैंड में हमारे बहुत प्यारे फनकार, जिनका ताल्लुक पी टीवी से था और ये हमारे स्ट्रगल के दौर के, जब स्ट्रगलिंग हो रही थी उस दौर के साथी थे, बहुत मोहब्बत के, खुश लिबास, नफीस शख्सियत, खूबसूरत आवाज, जो शोहरत लोग बरसों गीत गाकर करते हैं, इन्होंने एक गीत पी टीवी पर गाकर शोहरत की वो मंजिल तय कर दी थी और दुनिया उन्हें जमाल अकबर के नाम से जानती थी। जमाल अकबर हमारे यहाँ इंग्लैंड में ही थे, लंदन में मुकीम थे, गाहे बगाहे उनसे बातचीत हो जाती थी। अब की मैं इस बात का इतराफ़ करूँगा, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी। जमाल अकबर कल दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल फरमा गए। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश इखलाक और बहुत प्यारी सी शख्सियत का मालिक था मेरा ये प्यारा सा दोस्त, जिसे दुनिया जमाल अकबर के नाम से जानती थी। उनके तमाम अहल खाना यहीं लंदन में मुकीम हैं और जमाल अकबर कराची गए हुए थे अपने अहबाब से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने। वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा और आप इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतने कम गीत गाकर जिन लोगों को हासिल होती है, वो यकीनन औरों से मुनफरिद हुआ करते हैं। जमाल अकबर भी उन्हीं में से एक थे। आइए एक मतबा फिर हम अपने इस प्यारे से दोस्त, जिसकी कमी महसूस की जाएगी, यहाँ भी वो हमने उनके कई प्रोग्राम किए और करते रहते थे प्रोग्राम, अभी तक मौसीकी से वो वाबस्ता थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी करम और फजल से हसीन आवाज़ों से नवाजा है। पहले मेरा यार इखलाक गया, जिसकी कमी आज तक पूरी ना हो पाई, और अब गजलों का ये खूबसूरत सा सहरंगेज आवाज का मालिक जमाल अकबर भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये खला मौसीकी की दुनिया में पुर करना ज़रा मुश्किल होगा। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, जो आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं लंदन से, और इंशाल्लाह उनकी तदफीन उनके पहुँचने के बाद कराची में ही की जाएगी। क्या खूबसूरत फनकार था, मैंने बहुत कम ऐसे खुश लिबास लोग देखे हैं, और खूबरू और सहरंगेज आवाज़, ये तमाम चीज़ें यकजा अगर हो जाएं, कर दी जाएं, तो उन्हें आप जमाल अकबर कहेंगे। हम उन्हें खराज अकीदत के तौर पर उनका वो खूबसूरत गीत, जिसने शोहरत और मकबूलियत की तमाम मंजिलें एक रात में तय कर दी और आज भी लाखों दिलों की धड़कन है, कमर्शियल के वक्फे के बाद हम अपने यार, अपने भाई, अपने दोस्त, क्या क्या मैं कहूँ, सब सारी क्वालिटीज उनमें थी, जमाल अकबर को खराज अकीदत पेश करके उनका वो नगमा अपने लाखों सुनने वालों तक पहुँचाएंगे जिन्होंने जमाल अकबर को पहले नहीं सुना। फिर आप खुद कह उठेंगे कि क्या खूबसूरत आवाज थी, क्या सहर था, क्या दिलनशी अंदाज था इसके गाने का। मुलाकात होती है कमर्शियल के वक्फे के बाद, जब हम जमाल अकबर को खराज तहसीन पेश करेंगे।

0: AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. This is Bradford Asian Radio.
7: और आइए दोस्तों, हम सब मिलकर उस खूबसूरत फनकार, सहरंगेज शख्सियत और हसीन आवाज के मालिक जमाल अकबर, हमारे बहुत प्यारे से यार की वो हसीन गजल जिसने उन्हें रातों रात जमा रख पर बना दिया, खराज अकीदत के तौर पर पेश करते हैं। एक मरतबा फिर मुल्तमिस हैं आपसे कि इनकी मगफिरत की दुआ फरमाएं और इनके जो अहल अयाल हैं उन्हें अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि मुकीम यहाँ थे, घूमने गए थे और अल्लाह ताला ने वहीं से उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे ही अहले खाना पाकिस्तान पहुँचेंगे तो मरहूम की तदफीन होगी। तशरीफ़ ला रहे हैं खूबरू, खुश शक्ल, सहरंगेज़, दिलनशी, खूबसूरत, दिलों में उतर जाने वाली आवाज़ और कानों में शहद उंडेलने वाली आवाज के मालिक जमाल अकबर

मैं कोशिश करता हूँ कि इनका खूबसूरत वर्जन, हालांकि जिस वक्त मैंने इसे क्यों किया था कि मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सही नहीं है समा खराशी के लिए।

0: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी करूंगी।

चला एक ऐसी नज्म कहूं जो लफ्ज कहूं वो हो जाए, बस अश्क कहूं तो एक आंसू तेरे गोरे काल को धो जाए। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूं तो सो जाए। मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होंठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तो दिल था मैं गुम लिखूं वो खो जाए, तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, होंठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तो दिल था मैं गुम लिखूं वो खो जाए, तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से।

0: दोस्तों, ये पसंद थी इस्लामाबाद की हसीन फजाओं से हमारी प्यारी सी बिटिया हफ्सा नफीस की। हफ्सा नफीस, तुम्हें एक बहुत हैरान कुन अगर हम बात बताएं, यकीन आएगा। अमीर जो हैं, इनका ताल्लुक लंदन से है। इस कदर खूबसूरत उर्दू ये शख्स बोलता है और इस कदर खूबसूरत असार ये कहता है, इसीलिए तो ये कलाम इस कदर मकबूल हुआ। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंग्लैंड के हैं, तो ये है ना बहुत काबिल तारीफ बात कि इस कदर अनोखे ख्यालात, नया अंदाज और खूबसूरत अशार आपकी खिदमत में उन्होंने पेश किए हैं। आमिर अमीर हमारे साथ बहुत से मुशायरों में, जिनकी निजामत नाचीज ने की, दाखिल रहे हैं और बहुत खूबसूरत कहता है। बॉडी बिल्डिंग का शौक है ज़रा इनको, माशाल्लाह। शेर पढ़ने आते हैं ऐसा लगता है कि मुक्का मार के कहेंगे कि सुनो, मगर नहीं, बहुत नफीस, बहुत मुनकसरुल मिजाज और बहुत ही प्यारी सी शख्सियत के मालिक आमिर अमीर हैं और लंदन में मुकीम हैं ये। बहरहाल, आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाना थी। याकूब मजारी, आपका बलूचिस्तान से, परदेसी मजीद साहब खारियां गुजरात से, भगत सिंह साहब लीड से, सबके मैंने गीत नोट कर लिए हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि कमर्शियल के वक्फे के बाद 3 बजे के हम आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार लेकर हाजिर रहेंगे। मुलाकात होती है आपसे कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद, और उसके बाद हम आपके जो गीत हमने नोट किए हैं, सिलसिला जारी ऐसे रहेगा कि जिस हिसाब से आप तशरीफ लाए हैं उसी हिसाब से हम ये तोहफे आपकी नजर करते रहेंगे। गो हमारे प्रोग्राम में वकार मियां और रियासत भी मौजूद हैं। वकार साहब घर पर अभी मौजूद हैं और अभी कहीं जाने के लिए वो कन्फर्मेशन कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं घर से निकला सफर के लिए तो आपको बता दूंगा तोहफा, वरना अगर घर पर ही रहा तो फिर आपके लिए टाइम ही टाइम है। यही हाल रियासत साहब का है, वो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाड़ी में मोटरवे पे हैं और वापसी है उनकी मिडिल्स बरा से, जहां वो अपने अजीजों, आपको पता है ना आजकल बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं यहाँ, तो माँ बाप अब इजाफी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों के साथ ज़रा मशगूल ज़्यादा हैं। कहते हैं कल हम गए थे रियासत साहब और आज वापसी हो रही है, और इंशाल्लाह घर पहुँच कर आपको बताएंगे, तो जो गीत मैंने आपसे कहा है वो आप शामिल प्रोग्राम कीजिएगा।
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से

0: आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस, विंडोज यॉर्कशायर।
3: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
6: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio.
9: अभी तो आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio 1413 medium wave पर, Yorkshire की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। पेश खिदमत है हमारा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाजें। मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम में इस सेगमेंट को शामिल करने का मकसद यह है कि हम गीत बहुत शौक से सुनते हैं और बहुत मकबूल होते हैं, लेकिन हमें ये इल्म नहीं होता कि ये तहरीर किसने किया और इसे मौसीकी से किसने सवारा। हम तो गीत सुन लेते हैं और गीत को पसंद कर लेते हैं और फिर बाकायदगी से सुनते रहते हैं। इस तरह उन अजीम फनकारों का हक मारा जाता है, उन शुआरा का, गीत निगारों का, जो अपनी काविश से ये खूबसूरत तोहफा सजाते हैं। आज भी हमने एक ऐसा ही गीत मुंतखब किया है और एक ऐसे शायर की ये गीत है कि जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनके बेशुमार गीत हिंदुस्तानी फिल्मों में और पाकिस्तानी फिल्मों में आए और मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियां उन्होंने तय की और दुनिया उन्हें कतील शिफाई के नाम से जानती थी। कतील शिफाई, जिनका असल नाम औरंगजेब था, मोहम्मद औरंगजेब, आपकी जो पैदाइश थी हरिपुर हजारा में हुई। कहा यह जाता है कि अहल खाना पश्तो जबान में बात करते थे और हजारा की जो मकामी जबान थी, लेकिन उर्दू की शायरी को इस शख्स ने इस कदर अजमत बख्शी, इसकी गजलें, इसके गीत जबां जदे आम हो गए। आपको बेशुमार एजाजात से नवाजा गया, इन्हें पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आदमजी अवार्ड, चार मरतबा निगार्ड अवार्ड, हिंदुस्तान में अमीर खुसरो अवार्ड्स और कौन से वो अवार्ड हैं, मैं कितने नाम लूं जो इन्हें नहीं मिले। और ये वाहिद शायर हैं जिनके कलाम का तर्जुमा उर्दू के अलावा, उर्दू में आप कलाम कहते थे, रशियन, चाइनीज, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में हुआ। आज जो गीत हमने मुंतखब किया है वो इन्हीं का तहरीर करता है और आइंदा भी एक शायर और एक गीत दो आवाजों में आप इनके बहुत से गीत सुन पाएंगे। लेकिन मैंने आज सोचा कि कतील शिफाई का तस्करा किया जाए। कतील शिफाई बेइंतहा सादा और मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक थे और आपने बेशुमार फिल्मों के लिए हजारों गाने तहरीर किए जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह यकसा शोहरत और मकबूलियत हासिल की। और मैं आपको भी बताता हूँ कि इनके जो गीत थे उनकी थोड़ी सी तफसील अगर मुझे मिल जाए कि कितनी फिल्मों में आपने अपने गीत तहरीर किए, तो आप तक मैंने देखा तो था ये अभी मैं देख रहा हूँ

मैंने रात ढूंढ के निकाल के रखे थे और वो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ। यह है, बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही प्यारी सी शख्सियत, उनका दिया हुआ पान का बटुआ हाथ का उनका बना हुआ मेरे पास है। उन्हें मैंने लंदन में इंटरव्यू किया था तो वहाँ उन्होंने मुझे ये तोहफा दिया था। बहुत नफीस शख्सियत के मालिक थे। देखिए जो इनकी मकबूल फिल्म जो फिल्मी गीत हुए उनकी तस्वीर कुछ ये है। बड़े दिल वाला 1999 में, यह है मुंबई मेरी जान गाना उनका था। औजार 1997 में, तमन्ना 1997 में, नाजाइस 1995 में, नाराज 1994 में, 1993 में सर, फिर तेरी कहानी याद आई 1993 और तहकीकात 1993, पेंटर बाबू 1983, कुदरत 1981, बहन भाई 1979। इसमें मिक्स हैं ये सब इंडिया और पाकिस्तान की वो फिल्में जिनमें कतील शिफाई ने अपने अशार का जादू जगाया। बेगम जान, शीरी फरहाद, नायला, फरंगी, चिंगारी, हवेली, सीमा, कैदी, शहीद, क्लर्क, जहरे इश्क, अनारकली, नागन, इंतजार, कातिल, गुमनाम, तेरी याद, बहुत फिल्में हैं। तो कतील शिफाई का एक गीत मैंने ऐसा मुंतखब किया है जिसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और आप हैरान होंगे। इस गीत को तहरीर तो कतील शिफाई ने किया था लेकिन इसकी मौसीकी को जिस अजीम शख्सियत ने नवाजा था और जिन्हें पाकिस्तान में उस्ताद मौसीकार का दर्जा हासिल था, मलकर तरन्नुम नूरजहां के उस्ताद मोहतरम, और उनका ये उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ था कि उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत गीत, ऐसी मौसीकी तरतीब दी जो आज भी लोगों के कानों में शहद घोलती है। आपका नाम था मास्टर इनायत हुसैन। उनके यूं तो बेशुमार उर्दू पंजाबी गीत मकबूल हुए लेकिन इस गीत ने, जिसे कतील शिफाई ने तहरीर किया था, शोहरत के तमाम मदारिज मार्केट में आते ही तय कर लिए। तो आइए, तशरीफ ला रहे हैं खान साहब मेहंदी हसन खान साहब और फिर यही गीत मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाकर इन दोनों अहबाब ने इस गीत को अमर कर दिया। तो आज हमने 1969 की फिल्म दिल बेताब से ये गीत मुंतखब किया है, इसे पिक्चराइज किया है, किया गया है मोहम्मद अली और शमीम आरा पर, और गीत के बोल हैं, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर।

तो इस गीत के गीतनिगार कतील शिफाई को 20वीं सदी के फिल्मी गीतनिगारों में अव्वलियत दी जाती है और अजीम तरीन गीतनिगारों में तस्लीम किया जाता है। आप सब जानते हैं कि ना आज उस्ताद मौसिकार मास्टर इनायत हमारे दरमियान मौजूद हैं, न कतील शिफाही रहे, ना ही खान साहब मेहंदी हसन खान साहब, ना ही मलका तरन्नुम नूर जहां। ये खूबसूरत शाहकार आप तक पहुंचाकर ये सब दुनिया से रुखसत हो गए। आइए इससे पहले कि हम मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में एक शायर एक गीत दो आवाज़ों में यही अमर गीत आपकी नज़र करें, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कतील शिफाई मास्टर इनायत हुसैन खां साहब मेहंदी हसन खां साहब और मलका तरन्नुम नूर जहां के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। सुनते हैं मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में यही खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक शायर एक गीत दो आवाजें। आज हमने 1969 की फिल्म दिले बेताब से एक गीत मुंतखब किया था, जिसे मोहम्मद अली शमीमारा पर पिक्चराइज किया गया था। गीत के बोल थे, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ। मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन, गीत तहरीर किया था कतील शिफाई ने, और अपनी आवाज़ों का जादू जगा रहे थे खान साहब मेहंदी हसन खान साहब और मलका तरन्नुम नूरजहां। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा ये गीत। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान, जहाँ पर हमारे बहुत ही मोहतरम लिसनर याकूब मजारी साहब और उनके बहुत प्यारे से दोस्त, अगर वो कहीं करीब हैं, अली बख्श साहब, जो बाकायदगी के साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाकर सात समंदर पार से इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। याकूब मजारी, अली बख्श, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें अपने इज्जत-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे, तुम्हारी पसंद लेकर हाजिर हैं, कबूल करो।

और दोस्तों ये गीत पसंद थी याकूब मजारी और अली बख्श साहब की, जो हम बलूचिस्तान में इस वक्त सुन रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर याकूब मजारी और अली बख्श साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमेशा की तरह हमारी हिम्मत अफजाई के लिए तशरीफ लाकर हौसला बढ़ाया। अल्लाह आप दोनों अहबाब को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत से रखे, और इंशाल्लाह निगाह मेरी घड़ी की जानिब है जो इस बात का इशारा कर रही है कि रिफत अब्बास कमर्शल का वक्त करीब आ रहा है। मियाँ अगला गीत ना लगा देना। नहीं नहीं आप फिक्र नहीं कीजिए, मेरी निगाह घड़ी पर ही होती है, इसलिए कि वो काम इतना इम्पोर्टेंट होता है कमर्शल का, उसी की वजह से तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। हम कमर्शल का वक्फा लेंगे और उसके बाद आपको बंगले लिए चलेंगे जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाबे शकील साहब। और शकील साहब ने आज हमारे प्यारे से दोस्त भाई और खूबसूरत खुशरूप शक्ल खुश लिबास फनकार जनाबे जमाल अकबर साहब, जो पाकिस्तान कराची अपने दोस्त और अहबाब से मिलने और कुछ रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और वहीं उनका इंतकाल हो गया। यूं जमाल अकबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ अपने अहल खाना के साथ बरसा बरस से लंदन में मुकीम है और यही वजह है कि तदफीन में थोड़ी सी ताखीर यूं होगी कि जब तक यहाँ से अहल खाना वहाँ नहीं। ये कल मुझे खबर मिली थी और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये बहुत ही नफीस शख्सियत, मुनकसरुल मिजाज, हसीन आवाज़, हसीन अंदाज और बात करने का अंदाज भी बड़ा हसीन था। ऐसा लगता है कि कोई गा रहा है बात में। बहुत बड़ा फनकार था, बेशुमार इन्होंने गज़लें और गीत गाए, लेकिन इनका मकबूल तरीन गीत था वहीं जिंदगी के हसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहां हमसे छूटे, और वो अभी आपको मैं सुनवा चुका हूँ। अब हम चल रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। कमर्शियल के बाद इन्हीं का गाया हुआ एक बहुत खूबसूरत गीत जिसे खराज अकीदत के तौर पर हमारे मोहतरम जनाब शकील साहब बनले से पेश करना चाहते हैं, वो आपकी नज़र करेंगे। बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब।

0: quiz.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio. Bradford Asian Radio.

0: दोस्तों, मुझे अपने वो अहबाब जो पहले मेरे साथ पेज पर मौजूद थे, ज़रा परेशान हुए होंगे। असल में आज हमारा जो जिस पर हम आप तक पैगाम आपको वसूल करते हैं और प्रोग्राम पहुंचाते हैं, वो चार्ज नहीं था। अब मैंने फ़ोन अपना लगा दिया है जो मेरा पर्सनल है, और इसकी वजह से ये होगा कि हमारे देखिए दुखी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स दुखी नहीं होंगे, और वो परदेसी मजीद साहब तशरीफ ले आए हैं इस पर भी। तो अब आप हमारा प्रोग्राम देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के, इंशाल्लाह। सो अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे हमरा एक बहुत ही खूबसूरत से मेहमान, जिनकी आमद हमेशा बाहर का झोंका होती है, और वो बंगले से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। समझ तो आप गए ही होंगे। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब शकील साहब का, वो हमारे हमराह मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि वो आज क्या तोहफा आपके लिए लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। शकील भाई कैसे हैं?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाए कैसे हैं?
0: जितना शुक्र अदा करूँ उसका कम है।
1: सही बात है। तो तुम्हारे सुनने वालों को मैं तहे से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी। मैं खाली सलीम मीर साहब है, सूफी अब्दुल करीम साहब है, रिजवा रिजविन किया लिया है, यूब भाई है, नवीद भाई, यूसाद साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, आशमी हाउस वाले मायू परवेज साहब है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह, शफी अहमद नकवी साहब है, तारिक सुल्फी साहब, अबूबिलाई है, शाह सबको बेहतर से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपका मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम अहबाब तक पहुँचा।
1: तो ये गजल है, अयूब कासिम इनका नाम है।
0: अता कीजिए, अता कीजिए।
1: कहते हैं तनख्वाह रह गए हैं शबे इंतजार में, तनख्वाह रह गए हैं शबे इंतजार में, और माँ मचल रहे हैं दिले बेकरार में।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अता कीजिए मतलब।
1: तनख्वाह रह गए हैं शबे इंतजार में, और माँ मचल रहे हैं दिले बेकरार में।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वादे पे आप आ न सके इसका गम नहीं,
0: वादे पे आप आ न सके इसका गम नहीं,
1: लेकिन शिगाफ क्यों पड़ा कोलो करार में।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: मद्दम हुई चिरागे तमन्ना की रोशनी,
0: मद्दम हुई चिरागे तमन्ना की रोशनी,
1: शायद वह अब न आएगा सुने दियार में।
0: क्या बात है, क्या इंतखाब है शकील भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। बर्बादियों का अपनी हमें कोई गम नहीं,
0: बर्बादियों का अपनी हमें कोई गम नहीं,
1: रुसवाइयां तो आपने भी पाई प्यार में।
0: आहा वाह वाह वाह वाह।
1: ये इश्क खाकसार वो हुस्ने आन बना पसंद।
0: आहा क्या मिश्रा है।
1: इश्क खाकसार वो हुस्ने आना पसंद, बिगड़े न बात कहीं इसी खल्फ शार में,
0: इसी खल्फ शार में। क्या बात है, क्या बात है। अता कीजिए शेर।
1: ये इश्क खाक सार वो हुस्ने आना पसंद,
0: आहा
1: बिगड़े न बात कहीं इसी खल्फ शार में,
0: इसी खल्फ शार में। वाह वाह वाह वाह।
1: कैसे सुनाए हाल किसी दर्दमंद को,
0: कैसे सुनाए हाल किसी दर्दमंद को,
1: लब बंद हो गए हैं वफा के हिसार में।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। आखिरी शेर करते हैं।
0: अता कीजिए।
1: अयूब बेवफा से उम्मीद वफा नहीं,
0: आहा
1: अयूब बेवफा से उम्मीद वफा नहीं,
0: आहा
1: अमन बचाए रखे कांटों से बहार में,
0: दामन बचा के रखे कांटों से बहार में। भाई वाह। अता कीजिए मख्ता।
1: अयूब बेवफा से उम्मीद वफा नहीं,
0: आहा
1: दामन बचाए रखे कांटों से बहार में,
0: कांटों से बहार में। वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तो एक गजल लाया मोहसिन आफ्ताब है उनका नाम।
0: जी अता कीजिए बिस्मिल्लाह।
1: वो कहते हैं जिस तरह धूप का रंगत पे असर पड़ता है,
0: जिस तरह धूप का रंगत से असर पड़ता है,
1: नफ्स का वैसे इबादत पे असर पड़ता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या मतलब उठाया है, वाह वाह अता कीजिए।
1: जिस तरह धूप का रंगत पे असर पड़ता है, वैसे इबादत पे असर पड़ता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत।
1: ऐसे मुझ पर भी तेरे गम के निशान दिखते हैं,
0: ऐसे मुझ पर भी तेरे गम के निशान दिखते हैं,
1: जैसे मौसम का इमारत पे असर पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या तस्बीहात हैं साहब, वाह वाह वाह वाह।
1: सिर्फ माहौल से फिक्रे नहीं बदला करती,
0: बेशक
1: सिर्फ माहौल से फिक्रे नहीं बदला करती, दोस्तों का भी तबीयत पे असर पड़ता है।
0: सच्चा शेर, सच्चा शेर अता फरमाइए। सिर्फ माहौल से,
1: सिर्फ माहौल से फिक्रे नहीं बदला करती,
0: बेशक
1: दोस्तों का भी तबीयत पे असर पड़ता है,
0: बेशक बेशक।
1: दुश्मनों से ही नहीं होता है खतरा लाहक,
0: क्या खूबसूरत बात है, क्या सच्ची बात है। दोस्तों से
1: ही नहीं होता है खतरा लाहक, बागियों से भी हुकूमत पे असर पड़ता है,
0: बेशक बेशक। बड़े सच्चे अशआर हैं साहब, वाह वाह वाह वाह।
1: अब समझ आया सबब मुझको मेरी पस्ती का,
0: अब समझ आया सबब मुझको मेरी पस्ती का,
1: मांग घटती है तो कीमत पे
0: असर पड़ता है। भाई वाह वाह वाह वाह, क्या दूर की कौड़ी लाए हैं और क्या हसीन तस्वीर।
1: पता कीजिए, पता कीजिए, मेरी पस्ती का मांग घटती है तो
0: कीमत पे असर पड़ता है।
1: भूख नेकी की लगे या के लगे दुनिया की, भूख नेकी की लगे या के लगे दुनिया की, भूख लगती है तो सूरत पे असर पड़ता है,
0: भूख लगती है तो सूरत पे असर पड़ता है। क्या बात है भाई, क्या इंतखाब है,
1: शुक्रिया। भूख नेकी की लगे या के लगे दुनिया की, भूख लगती है तो सूरत पे असर पड़ता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: रिस्क रुकता है नमाजों के कजा करने से,
0: बेशक रिस्क रुकता है नमाजों की कजा करने से।
1: नियतें बद हो तो बरकत पे
0: असर पड़ता है, बिल्कुल सच्चा शेर। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, रिस्क रुकता है अता कीजिए।
1: रिस्क रुकता है नमाजों के कजा करने से, नियतें बद हो तो बरकत पे असर पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: साफ दिखती है बुढ़ापे में कजा, साफ दिखती है बढ़ाते में कजा, सच तो है,
0: सच तो है।
1: उम्र के साथ बसीरत पे असर पड़ता,
0: असर पड़ता है, उम्र के साथ बसीरत पे असर पड़ता है। भाई बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए शकील भाई।
1: बढ़ाते में कजा, सच तो है, उम्र के साथ बसीरत पे असर पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: आखिरी शेर कहते हैं
0: अता कीजिए।
1: पास रहने से ही बढ़ती नहीं चाहत मोहसिन, पास रहने से ही बढ़ती नहीं चाहत मोहसिन, फासलों से भी मोहब्बत पे
0: असर पड़ता है। क्या बात है, अता कीजिए।
1: पास रहने से ही बढ़ती नहीं चाहत मोहसिन, फासलों से भी मोहब्बत पे असर पड़ता है।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या इंतखाब है शकील भाई आपका। आपने जो खिराज अकीदत मोहतरम जमाल अकबर मरहूम की खिदमत में पेश करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, अब हम आपको खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे और खुदा हाफिज कहेंगे, बल्कि आपका तोहफा उस अजीम फनकार और गुलकार की नज़र करेंगे खिराज अकीदत के तौर पर आपकी जानिब से। लेकिन उससे पहले मैं मोहब्बत भरा सलाम आपके लिए भेजा है परदेसी मजीद साहब ने, और कहते हैं वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आधा घंटे तक कह सकता हूँ, इतना बड़ा वाह वाह किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आइए दोस्तों, अब शकील भाई का खराज अकीदत जमाल अकबर के हुजूर, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इनके درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ یہ سید زادہ بھی ہم سے رخصت ہوا۔ بہت خوبصورت شخصیت، نفیس انسان۔

0: winner is...
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live

0: performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
4: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice. This is Bradford Asian Radio.
6: और दोस्तों, प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी अपने अख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के 4 कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। अब हम चलते हैं आपको लेकर मिडिल्सब्रा, जहाँ पर ब्रैडफोर्ड से तोहफा पहुँच रहा है हमारी प्यारी सी बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से सुमैरा का अपनी कजन्स के नाम। और आज उन्होंने उन सब के लिए न सिर्फ मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और दुआओं का तोहफा भेजा है, ये तोहफा गीत की शक्ल में भी उनकी नज़र किया है। कबूल कीजिए اہل مڈلزبرا کو میرا سلام پہنچے. پیاری بچیوں جیتی رہو, خوش رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے اور تمہاری یہ محبت اور پیار کا رشتہ یوں ہی قائم دائم رہے.

0: पहले कि हम आपको लीड्स लेके चलें और भगत सिंह साहब का तोहफा उनकी नज़र करें, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये खुशखबरी सुनाते हुए कि रियासत साहब और वकार मियाँ दोनों तशरीफ ला चुके हैं, उनके दोनों के तोहफे भी पेश करने हैं। रियासत साहब अभी अभी मिडिलसब्रा से हरिसवील पहुँचे हैं और वकार मियाँ की मीटिंग कैंसिल हो गई है डम्बरा वाली, सो वो घर पर मौजूद हैं। तो अब मुझे फिक्र नहीं है, मैं इंशाल्लाह भी मेरे पास वक्त है शामिल प्रोग्राम करूंगा आप दोनों के गीत। और भगत सिंह साहब थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए ताकि हम अपने मेहमान जो स्वीडन से अदब के एक उफक पर चमकता हुआ सितारा हैं जनाबे पहचानगे, नाम बताइए। जी बिल्कुल सही पहचाना, मैं नवीद ही का जिक्र कर रहा हूँ, तशरीफ ला चुके हैं, आइए स्वीडन चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रिफत भाई।
0: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन, कैसे हैं नवीद मियां?
1: आमीन जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए, ठीक हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है।
1: तो बहुत ही प्यार अदब भरा सलाम मेरा तमाम सामीन को, खासकर शकील भाई, मजीद भाई और महबूब राय भाई। और आज जिक्र हो गया कतील शिफाई साहब का, वाह वाह वाह।
0: आज उनका जिक्र हो गया था,
1: क्या खूब उनके गीत और क्या गजलें और क्या नज़में उन्होंने लिखी,
0: क्या बात है, कमाल है।
1: मेरे उनमें से एक शायद आपने सुन रखी हो, दिल की दुनिया में कोई हमसा भी सौदाई ना हो,
0: आहा
1: चाक दामन हो के भी चाहे कि रुसवाई ना हो,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये मेरे पहला उनके जेहन में आया, फिर उन्होंने मेहदी हसन खान साहब ने एक गा रखी है उनकी गीत नुमा
0: जी,
1: जिंदगी में तो सभी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में। और फिर एक है वो, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में,
0: बाल बानो
1: दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। ये अगर पूरी मेरे सामने आ गई, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ
0: जी,
1: दुनिया में कोई हमसा भी सौदाई ना हो
0: जी, आप पढ़ें पढ़ें।
1: मैं आपकी नजर करूंगा, वरना मैंने कलाम और मुंतखब कर रखा है शिफाई साहब का
0: जी जी।
1: तो है कि इस अदा से भी हूँ मैं आशना तुझे इतना जिसपे गुरूर है,
0: आहा
1: उस अदा से भी हूँ मैं आशना तुझे इतना जिसपे गुरूर है, मैं जीऊंगा तेरे बगैर भी मुझे जिंदगी का शऊर है,
0: भाई वाह वाह वाह वाह वा।
1: शुक्रिया। और ना हवस मुझे मैं नाद की, न तलब सबा और सहाब की, तेरी चश्मे नाज की खैर हो मुझे बेपिए ही सुरूर है,
0: मुझे बेपिए ही सुरूर है, क्या बात है क्या बात है भाई, वाह वाह वाह नवीद।
1: तेरी चश्मे नाज की खैर हो मुझे बेपिए ही सुरूर है, और जो समझ लिया तुझे बावफा तो फिर इसमें तेरी भी क्या खता,
0: जो समझ लिया तुझे बावफा तो फिर इसमें तेरी भी क्या खता,
1: ये खलल है मेरे दिमाग का, ये मेरी नजर का कसूर है,
0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। और कोई बात दिल में वो ठान के ना उलझ पड़े तेरी शान से, कोई बात दिल में वो ठान के ना उलझ पड़े तेरी शान से, वो नियाज मंद जो सरबखम कई दिन से तेरे हुजूर है, और मुझे देंगी खाक तसल्लियां तेरी जाग उदास तजल्लियां,
0: मुझे वाह वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या मिसरा है साहब, वाह वाह वाह वाह।
1: मुझे देंगी खाक तसल्लियां तेरी जाग उदास तजल्लियां, मैं सवाल शौक विसाल हूँ तू जलाल शोला तूर है,
0: क्या बात है वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। और मैं निकल के भी तेरे दाम से ना गिरूंगा अपने मकाम से, रिफत भाई
0: क्या खूबसूरत मिसरा है,
1: मैं निकल के भी तेरे दाम से ना गिरूंगा अपने मकाम से, मैं कतील तेगे जफा सही, मुझे तुझसे इश्क जरूर है।
0: क्या बात है मख्ताता कीजिए भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मैं निकल के भी तेरे दाम से,
1: मैं निकल के भी तेरे दाम से ना गिरूंगा अपने मकाम से, मैं कतील तेगे जफा सही, मुझे तुझसे इश्क जरूर है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। और एक छोटे बह की आपकी नजर करता हूँ, सलमान अख्तर साहब लिखने वाले, जावेद अख्तर साहब के भाई।
0: जी अता कीजिए, बिस्मिल्लाह।
1: हम जो पहले कहीं मिले होते, हम जो पहले होते। कहीं मिले होते और ही अपने सिलसिले होते,
0: वाह वाह वाह,
1: फिर हर एक बात ठीक से होती, फिर हर एक बात ठीक से होती, फिर ना उलझन ना फासले होते।
0: भाई बहुत उम्दा, अता कीजिए, अता कीजिए भाई, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: हम जो पहले कहीं मिले होते और ही अपने सिलसिले होते, फिर हर एक बात ठीक से होती, फिर ना उलझन ना फासले होते, और ना फिर ना तन्हाई रात को डसती, फिर ना किस्मत से ये गिले होते, और फिर ना लगता ये शहर एक सहरा,
0: लगता ये शहर एक सहरा,
1: फिर ना गुम दिल के काफिले होते।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह भाई, क्या मुरस्सा इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। और फिर गजल होती सब जुबानों पर, फिर गजल होती सब जुबानों पर, फिर किसी के ना लब सिले होते।
0: क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज है साहब, वाह वाह वाह वाह, सलमान साहब का वाह वाह वाह।
1: आखिर शेर लिखते हैं कि फिर हर एक लम्हा गुनगुना उठता, फिर हर एक लम्हा गुनगुना उठता, फिर हर एक सिमत गुल खिले होते, हम जो पहले कहीं मिले होते।
0: क्या खूबसूरत इंतखाब है यार नवीद, दिल खुश कर दिया माशाल्लाह, और आपके कलाम को बेइंतहा पसंद फरमाया है परदेसी मजीद साहब ने कालिया गुजरात में।
1: बहुत शुक्रिया परदेसी मजीद साहब का भी, और प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अख्तर साहब पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, प्रोफेसर अमेरिका में जॉब भी करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और कलाम देखिए कि इनके मैंने कुछ अभी चीदा चीदा मुंतखब किए, आपके लिए आइंदा प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
0: आंखों पर
1: तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया रिफल भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दो हमें याद रखिए।
0: एक ही दुआ दे सकते हैं नवीद मियां, अल्लाह करे जोरे बयां और ज्यादा, हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा अपने जमान में रखे, सेहत से रखे और नजरे बद से बचाए।
1: तमाम तन्ने एक तमन्ना है आपके साथ, बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों ये थे हमारे बड़े खूबसूरत अदब के शदाई, शेर के मतवाले और खूबसूरत मुंतखब कलाम के साथ हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं स्वीडन से नवीद मियां, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब हस्ब वादा हमें वो गीत पेश करने हैं जिसका हमने अपने सामईन और नाज़रीन से वादा कर रखा है, तो चलते हैं पहले लीड्स जहां हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर भगत सिंह साहब मौजूद हैं और जिन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है, उनका तोहफा उनकी नज़र करते हैं। इसके बाद हम वक़ार मियां का तोहफा वेकफील्ड में और उसके बाद रियासत साहब का तोहफा हरदस्वील लेकर चलेंगे, चलते हैं लीड्स।

और दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ एक ऐसे खूबसूरत गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर वक़ार साहब की जीवन साथी ने, और कहती हैं कि रोज़ आप अपनी पसंद का सुनते हैं, आज हमारी पसंद का भी तो सुन लीजिए। सर आँखों पर हम आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे वक़ार मियाँ, और आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को आला तालीम याफ्ता रूप में देखें और अल्लाह नज़र बद से बचाए। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए।

0: 13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.
6: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ रह गया है 5 बजे तक। और अब हम आपको, इससे पहले कि मैनचेस्टर के सनती शहर लेकर चलें और चौधरी रुखसार अहमद साहब का तोहफा उनकी नज़र करें, जिनकी मोहब्बतें, चाहतें और प्यार हम पर कर्ज है। इस कदर खूबसूरत अलकाबात से आप नवाजते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं कि मुझे यह एहसास होने लगता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ। बहरहाल, हम आपको दिल की गहराइयों से चौधरी रुखसार अहमद साहब को शामदीद कहते हैं और आपका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआएं तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। तशरीफ़ लाए हैं, ताखीर से आमद हुई है, लैया पंजाब पाकिस्तान से जनाब नज़ीर अहमद साहब, और हमेशा की तरह उन्होंने तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम भेजा है और कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज़्ज़ुमान में रखे। हमारी ढेर दुआएं, नज़ीर अहमद साहब हमेशा आपके हमराह मौजूद हैं। तशरीफ लाए हैं AD चौधरी साहब, और मोटरवे M62 पर अभी पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह जब तक वो पहुंचेंगे, मैं उनका तोहफ़ा उनकी नज़र कर दूँगा। तो अब हम चलते हैं मैनचेस्टर के सनती शहर में चौधरी रुखसार अहमद साहब के पास, जो कहते हैं कि जब से बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, मेरे काम में बेइंतहा इजाफा हो गया है। अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत अता फरमाए। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। और एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र कर रहा हूं, एक लम्हे के लिए हाथ रहा हाथों में, एक लम्हे के लिए हाथ रहा हाथों में, एक लम्हा वो मेरी जीस का हासिल ठहरा। एक लम्हे के लिए हाथ रहा हाथों में, एक लम्हा वो मेरी जीस का हासिल ठहरा। तो जी रियासत साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और महफूज रखे हर बला से। आपका तोहफा हाजिर है। इसके बाद रियासत साहब, हम हर तफवील जा रहे हैं, आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे।

0: Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डे।

0: 30 Wetley Hill, Bradford, BD8, 8NG, phone 01274-477-257, Dubai Jewelers.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: किसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंप्लीट
3: ऑडिट, मॉर्गेज। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रैडफोर्ड 01274201679।
10: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio. This is Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड।

0: फोर्ट BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio. Bradford Asian Radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Eats Road, Bradford 3.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. You're listening to Bradford Asian Radio.

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें

0: 13:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
12: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
12: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
12: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
12: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. This is Bradford Asian Radio.

0: 14:13 a.m. DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी

0: फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कार्पेट्स लिस्टेड
1: एट लिस्टिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
2: द हिंदी उर्दू म्यूजिक शो ऑन ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 14:13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड, BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काकी की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: राम बना, इसीलिए तो कहा है कि दौलत राम का बुरे काम का बुरा नतीजा।
1: क्यों भाई चाचा।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो।

0: से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पहल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
3: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूर असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
5: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
4: You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Radio.co.uk, Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी।

0: 77 Bradford Asian Radio.
1: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: visionradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: free mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching,
4: affordable and effective.
3: It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
5: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
8: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: ख्यालों में

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

Solo una vez.

0: First Choice Windows Yorkshire.
1: Sheffield Miller CIC presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
3: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
3: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
3: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर
5: वेलवुड बिल्डिंग, एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio. Bradford Asian Radio, the official media partner of this year's Bradford Mela.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Ever thought of broadcasting? Become a radio presenter. Call the studio on 01274 306677. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian Radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on 1413 AM, DAB Plus, our free mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. Bradford's number one Asian community radio. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family
7: first choice, Windows Yorkshire.
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield.

0: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
0: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: Broadcasting from Bradford, listen to all over the world, Bradford Asian Radio, our voice, your choice.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.